0: कल्याण और संबंध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए, जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना

0: सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मन्नलूर और पिल्पाइक्कम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गॉर्डोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
1: What is the most important?
2: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
1: With deep feelings, emotional intelligence.
0: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
3: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज़ादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुँचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
4: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
5: पीओजेके में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूँ। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 एसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज सिटीजन वेलफेयर मस्ट रिमेन एट हार्ट ऑफ रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स शुड बी डिजाइंड अराउंड पीपल्स नीड्स। Union Minister JP Nadda says, government ready to discuss neat paper leak issue in parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today, and 23rd Commonwealth Games to begin in Glasgow, Scotland today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that welfare of citizens must remain at the heart of all reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. He said reforms should not only improve the functioning of the government but also accelerate India's journey towards becoming a developed nation. We have a report.
3: Prime Minister Modi made these remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors in advancing the vision of Viksit Bharat. The meeting held at the Prime Minister's residence focused on strengthening governance, improving inter-ministerial coordination and accelerating the implementation of reforms aimed at enhancing citizens' welfare. Highlighting the rapidly evolving governance landscape, Mr. Modi stressed the need to modernize governance processes in line with changing times. Calling for greater convergence among ministries, he said the vision of Viksit Bharat should become a Jan Andolan, with the country's youth forming the foundation of this national mission. Addressing the issue of drug abuse among young people, Prime Minister stressed the need for an institutional mechanism that promotes coordination across departments and integrates youth-centric initiatives to tackle the challenge more effectively. On sports, Mr. Modi advocated an integrated development strategy to position India as a global sporting destination. Prime Minister also highlighted the transformative potential of the PM Kusum scheme in strengthening the agriculture sector through wider adoption by farmers. He further emphasized the need for a global mapping of skill requirements to align India's workforce with emerging international opportunities and future employment demands. With Bhanu and Suparna, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.

0: മെഗാഹിറ്റ്സിൽ പ്രക്ഷേപണം തുടരുന്നു. സമയം 12 മണി. ഇപ്പോൾ ഹിന്ദിയിലും തുടർന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും വാർത്തകൾ. ഡൽഹി റിലേ.
1: നമസ്കാർ. ആകാശവാണി സമാചാർ കെ സാത്ത് മേ കനകലത. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्र मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नेता बनाने को तैयार है.

0: नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर और छात्र विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सदस्य को किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि ये सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। श्री बिरला ने कहा कि सरकार पहले ही विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है कि वो नीट पेपर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़, बिजली गिरने तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। बाद में विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनके इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ब्रुनेई के विदेश मंत्री प्रिंस अब्दुल मतीन के साथ बैठक में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और डिजिटल नवाचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सिक्किम सरकार ने नामचे जिले में सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए सूचना और व्यवस्था प्रमुख के नेतृत्व में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने इससे पहले ही उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। अब तक सुरंग से 22 शव बरामद किए जा चुके हैं। बचाव अभियान अब भी जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ, ഇപ്പോൾ സമയം 5 മണി.
1: ഏ ആകാശവാണി കാ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്ര ഹേ ആയി ആപ് സുൻതെ ഹേ ഹിന്ദി പാഠ്. അധ്യാപിക ഹേ അനുപം രശ്മി. ഛാത്രായം ഹേ തന്മയ പിള്ളൈ ഓർ മുസ്കാൻ ജിഷാർ.
2: नमस्ते बच्चों.
3: नमस्ते अध्यापिका जी.
2: कैसे हैं आप लोग?
3: हम अच्छे हैं.
2: अच्छा, तो आज की कक्षा शुरू करें?
3: हाँ.
2: तो ठीक है, मैं आपको गौरैयों के बारे में बता रही थी, है ना. मैंने आपको बताया कि गौरैयों ने अपना घर बना लिया, उन्होंने अपना सामान जमा लिया, और सामान जमा कर वो क्या करने लगी?
3: अपना घोंसला बनाने लगी.
2: घोंसला बनाकर क्या करने लगी?
4: गाना गाने लगी.
2: गाना गाने लगी. गाना हम कब गाते हैं?
3: जब हम खुश होते हैं.
2: हाँ, अब जब हमें अच्छा लगता है.
3: हाँ.
2: जब हमारा मन अच्छा होता है ना, जब हमारा माइंड अच्छा होता है तो हम गाना गाते हैं ना. तो वो भी तो हमारे जैसे ही है ना. कौन?
3: गौरैया.
2: गाना गाने का मतलब क्या हुआ? कि गौरैया को घर पसंद आ गया, उन्हें पिताजी का घर अच्छा लगने लगा. माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे. सोफे पर बैठे हुए हैं दोनों. ओके, उस घर के अंदर जहाँ पर ये गौरैया लोग अपना घोंसला बना रहे हैं, और उन लोग देख रहे हैं दोनों गौरैया को. कौन देख रहा है? वो दोनों कहाँ पर बैठे हुए हैं?
3: सोफे पर.
2: तो अब मैं जब तुम्हें नाम बोल के पूछूंगी तब आप आंसर बोलिएगा, ठीक है? तो पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है. तो माँ बोलती है पिताजी से, अब आप कितना भी कोशिश कर लो, अब ये गौरैया यहाँ से नहीं उड़ेंगी. क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अपना घोंसला बना लिया है. कौन बोल रहा है ये सब?
4: माँ ने.
2: माँ ने, ठीक है. तन्मया कौन बोला ये? किसने कहा ये?
4: माँ ने.
2: माँ ने. ओके, मुस्कान किससे कहा?
3: पिताजी से.
2: तो इस बार पिताजी को गुस्सा आ गया. वे उठ खड़े हुए, बोले देखता हूँ इसे, ये कैसे रहती है यहाँ पर, गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ. तो अब पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया. ओके, बोले नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी देखता हूँ कि या तो ये गौरैया इस घर में या फिर मैं रहूंगा, मैं अभी इनको निकाल कर बाहर करता हूँ. छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे. माँ ने क्या किया? माँ ने मजाक किया, ठीक है. मदर इज मेकिंग फन ऑफ द फादर. ओके, अभी तक तो आपने चूहों को बाहर नहीं कर सके, अभी गौरैयों को कैसे बाहर करोगे? माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं. अगर माँ कोई बात मजाक में बोलती है तो पिताजी को बहुत गुस्सा आ जाता है. उबल पड़ते हैं, क्या है बच्चों ये मुहावरा है, उबल पड़ना. उबल पड़ना इसको बोलते हैं मुहावरा. ओके, इसको अंग्रेजी में आप लोग इडियम्स बोलते हो, उसे हम हिंदी में मुहावरा बोलते हैं. इसका मतलब है गुस्सा करना, बहुत गुस्सा करना. तो वे समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है. तो पिताजी को गुस्सा आ गया, वे फौरन उठ खड़े हुए, पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से शू शू कहा, बाहें जुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे. कभी बाहें जुलाते, कभी शू शू करते. उनको बहुत गुस्सा आया. किनको गुस्सा आया? पिताजी को. यहाँ पर गौरैयों ने अपना घोंसला बनाया और वहाँ जाकर शू शू बोल रहे हैं. उनको कभी हाथ से अपने हाथ हिला रहे हैं, कभी पैर हिला रहे हैं, कभी मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है. क्यों बोल रहे हैं? ताकि वो लोग दोनों यहाँ से चले जाएं. कौन? गौरैया. गौरैयों ने घोंसलों में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा. तो गौरैयों ने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि कोई आदमी है और कोई आदमी शू शू बोल रहा है ना, वो अपनी बाहें झुला रहा है, तो उन्होंने अपने घोंसले में से झांक कर देखा कि ये कौन है. तो दोनों एक साथ चींची करने लगे और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी. पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है, माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सोचता है. हंसकर बोली, चिड़ियां एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और क्यों नाच रहा है. तो माँ ने अपने पति से मजाक किया. ओके, अरे भैया की ये जो चिड़िया है ना, ये लोग एक दूसरे से पूछ रही है ये कौन आदमी है जो नाच रहा है. माँ को मजाक करने की सूझी, इसलिए माँ ने मजाक किया. तब पिताजी को और भी गुस्सा आ गया और वो पहले से भी ज्यादा ऊंचे कूदने लगे. ये सुनकर पिताजी और गुस्सा हो गए. जब माँ ने उनका मजाक उड़ाया तो पिताजी और भी गुस्सा हो गए और वो जोर जोर से शू शू शू करने लगे. ओके, गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी. उन्हें पिताजी का नाचना बहुत पसंद आ रहा था. गौरैया इज वेरी हैप्पी, दे आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर नेस्ट. वो लोग घोंसले से बाहर आने लगी. क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा कि ये जो आदमी है बहुत अच्छा नाच कर रहा है. ओके, तो माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं, अब तो इन्होंने अंडे दे दिए होंगे. माँ ने कहा, अभी ये नहीं निकलेंगी यहाँ से, इन्होंने अपने अंडे दे दिए होंगे, है ना, अभी ये नहीं जाएंगी यहाँ से. निकलेंगी कैसे? नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए. इसी बीच गौरैया फिर से घोंसले में जा बैठी. उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा. ची ची करती हुई गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी. अब पिताजी को गुस्सा आ गया. पिताजी ने क्या किया, अपने हाथ में

0: डंडा लिया। डंडा मालूम है बहुत मोटा होता है, और उस डंडे की सहायता से फैन को हिलाने लगे ताकि वो घोंसला नीचे गिर जाए। किसका घोंसला?
1: गौरैया का।
0: गौरैया का घोंसला। डंडे को देखकर गौरैया चीची करने लगी। अब उन्हें पता चल गया गौरैया को कि कोई खतरा है, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। माँ ने कहा, ये डंडा लेकर आने की क्या जरूरत थी, फैन चला देते, पंखा चला जाते तो अपने आप उड़ जाती। क्यों? माँ ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनका घोंसला कहाँ पर था, गौरैया का घोंसला
1: पंखे के
0: हाँ
1: ऊपर,
0: ऊपर, इसलिए डंडा लेकर आने की जरूरत ही नहीं है, इतनी
1: हाँ।
0: क्रूर होने की जरूरत नहीं है, डोंट बी टू मच क्रूअल। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके, एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। ओके, मगर पिताजी ने ठान ली कि मैं दोनों गौरैयों को अपने घर से बाहर निकालूंगा। उन्होंने डंडा लिया और डंडा लेकर पर्दे की तरफ गए। खिड़की के ऊपर पर्दा लगा रहता है ना, पर्दे की तरफ गए तो एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर चली गई, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद करो, तभी ये निकलेंगी। तब माँ ने समझाया कि आप सभी दरवाजे खोल रहे हो, सभी दरवाजे बंद करो, एक दरवाजा खोल कर रखो, तभी ये बाहर जा पाएंगी, नहीं तो ये बाहर नहीं जाएंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। तब पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने अपने बेटे को डांटा, झिड़का। झिड़का मतलब डांटा प्यार से, जैसे अभी आपके मम्मी पापा आपको डांटते हैं ना कभी कभी, ए तन्मया जाओ वहां से वो लेकर आओ, है ना,
1: हाँ
0: उसको
1: हाँ
0: बोलते झिड़कना।
1: ठीक
0: मगर
1: है।
0: डांटने की बात अलग है, डांटना मतलब आज से तुम्हारा मोबाइल देखना बंद, जब अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम मोबाइल नहीं देख सकते, उसको बोलते हैं डांटना। तो इसलिए पिताजी ने बेटे को झिड़का, जा तू जल्दी जा और सारे दरवाजे बंद कर, एक दरवाजा खुला रखना। मैंने भाग कर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। तो उस बच्चे ने क्या किया, बेटे ने क्या किया, बेटे ने किचन वाला दरवाजा खुला छोड़ दिया, बाकी जो दोनों दरवाजे थे बंद कर दिए।
1: ठीक है।
0: क्यों किया ऐसा? ताकि वो गौरैया उस किचन वाले दरवाजे से उड़कर बाहर जा सके। चलिए आगे चलते। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैया पर हमला बोल दिया। अब पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, हमला बोल दिया। ओके, टू अटैक, धावा बोल दिया उनके ऊपर। किसके ऊपर?
1: दो गौरैया के ऊपर।
0: हाँ, एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची, और लाठी से मूवमेंट कर रहे थे वो। ओके, एक बार तो लाठी माँ के सिर पर लगने से थोड़ी बची। ओके, और चीची करती हुई चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह बैठती, आखिरी दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। कभी गौरैया एक जगह जाती, कभी दूसरी जगह, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, किचन वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। ओके, कहाँ से निकल गई? किचन को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं?
1: रसोई घर।
0: हाँ, रसोई घर, वेरी गुड तन्मया। माँ तालियां बजाने लगी, पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाई कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म किया, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगे तो घर छोड़ देंगी। अब पिताजी बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए पिताजी?
1: क्योंकि वो बाहर निकल गए।
0: हाँ, कौन निकल गया बाहर?
1: दो गौरैया।
0: दोनों गौरैया बाहर निकल गई, और उन्होंने हुक्म दिया, उन्होंने ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो, वो अंदर ही नहीं आ सकती। अगर खिड़की दरवाजे बंद होंगे तो गौरैया अंदर नहीं आएगी। तो तभी पंखे के ऊपर से चीची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। जैसे ही पिताजी ने ऑर्डर दिया, उसी समय क्या हुआ, पंखे के ऊपर से दोनों गौरैया चीची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। मैंने सिर ऊपर उठाकर देखा, दोनों गौरैया फिर से अब घोंसले में मौजूद थी हैं। वो दोनों फिर से अपने घोंसले में आ गई। उन्होंने सब कमरा बंद किया, दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद की, फिर भी उन लोग दोनों वापस आ गए। कैसे? जो दरवाजा रहते हैं, देखो दरवाजे के नीचे थोड़ी जगह होती है ना, उस जगह से वो लोग नीचे आ जाते हैं, वो लोग आराम से आ सकते हैं, चिड़िया गौरैया छोटे छोटे तो होते हैं। अब पिताजी को गुस्सा आ गया, पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसी जा रही थी। क्यों क्यों माँ जोर जोर से हंस रही थी?
1: क्योंकि गौरैया वापस।
0: हाँ, पिताजी ने कितना कुछ किया, कमरे बंद किए, दरवाजे बंद किए, खिड़की बंद की, फिर भी वहाँ वापस आ गए अपने घोंसले में। तो वो तो उनका घर है बच्चों, है ना, अपने घर में तो सभी लोग वापस आते हैं ना।
1: हाँ।
0: तो आप लोग भी अपने घर वापस जाओगे ना?
1: हाँ, जाएंगे,
0: हाँ।
1: जाएंगे।
0: ये भावना तो सबके अंदर होती है। आप तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। आप तो पिताजी ने गौरैयों के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किया। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए, जो दरवाजों में जो नीचे की जो जगह होती है ना, उस जगहों को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, उस जगह पर उन्होंने कपड़े लगा दिए ताकि कोई छेद बचा ना रह जाए, एक भी होल बचा नहीं होना चाहिए। जहाँ भी जितने भी होल थे, सब होल को कपड़ों से बंद कर दिया गया। छेद मतलब
1: होल।
0: हाँ, तो छेद कहाँ पर था?
1: दरवाजे के नीचे।
0: दरवाजे के नीचे उस छेद के अंदर क्या घुसा दिया गया?
1: कपड़े।
0: कपड़ा घुसा दिया गया। क्यों घुसा दिया गया?
1: ताकि गौरैया वापस अंदर।
0: यस। ओके, फिर लाठी झुलाते हुए इन पर टूट पड़े, चिड़िया ची ची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी देर बाद फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। पिताजी को फिर से गुस्सा आया, उन्होंने फिर से उसके ऊपर आक्रमण किया। ओके, किसके ऊपर? गौरैया के ऊपर। गौरैया फिर से कमरे से बाहर चली गई।

0: थोड़ी देर के बाद फिर से वापस।
1: कैसे? रोशनदान से खिड़की में से जिसका एक शीशा टूटा हुआ था वो शीशे से अंदर आ गई। ओके, खिड़की से कैसे अंदर आई? खिड़की का जो शीशा होता है ना, खिड़की में जो ग्लास लगा रहता है वो ग्लास टूटा हुआ था, इसलिए उस ग्लास टूटने से थोड़ा सा होल बन जाता है ना, उस होल से अंदर आ गई है ना। क्यों? उनको भी तो अपने घर के अंदर आना है ना। इसलिए देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे दे दिए होंगे, अब तो यहाँ से नहीं जाएंगी। माँ ने कहा मत निकालो इन गौरैयों को, अपने घर से मत निकालो, अब तक तो उन्होंने अंडे दे दिए होंगे। अगर अब चिड़िया अपने अंडे दे देती है तो फिर वो वापस नहीं जाती, ठीक है, अपना घर छोड़कर वापस नहीं जाएंगी। क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा लूं, इसका क्या मतलब हुआ? ये तुम क्यों बोल रही हो कि इन चिड़ियों के कारण, इन गौरैयों के कारण मेरा कारपेट खराब हो जाएगा, है ना? वो अपनी गंदगी यहाँ पर मेरे कारपेट के ऊपर डालेंगी, ठीक है? तो कालीन का मतलब बच्चों
2: कारपेट।
1: तो पिताजी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये गौरैयों को मेरे घर से बाहर जाना ही पड़ेगा, इन गौरैयों के कारण मेरा अपना कीमती कारपेट खराब हो जाएगा, ठीक है? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी चलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। पिताजी ने अब क्या किया? वो जो खिड़की का जो शीशा टूटा हुआ था ना, उस शीशे के अंदर कपड़ा ठूस दिया। ओके, सब कुछ बंद कर दिया, अब देखता हूँ कि अब ये लोग कैसे अंदर आती, ठीक है? अब बेचारी वो क्या कर रहे हैं गौरैया? हमारे घर के चारों तरफ जो दीवार होती है उस दीवार पर जाकर बैठ गई। कौन?
2: गौरैया।
1: अब वो बेचारी उदास हो गई क्योंकि अब वो घर के अंदर कैसे जाएं? इतने में रात पड़ गई, धीरे धीरे रात हो गई। हम सभी खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। हम सभी ने खाना खाया और हम ऊपर गए और हम सो गए। कौन? माँ, पिताजी और उनका
2: बेटा।
1: बेटा जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। बेटा बोल रहा है, ठीक है? मैंने जाने से पहले आंगन में देखा, मैंने आंगन में क्या देखा? आंगन में गौरैया नहीं थी। हाँ, उन्हें अक्कल आ गई होगी, हाँ अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दोनों गौरैयों ने गिव अप कर दिया, उन्होंने हार मान ली, दूसरी जगह चली गई होंगी। मगर कैसा हो सकता है?
2: नहीं,
1: हाँ क्यों नहीं हो सकता?
2: क्योंकि घर के अंदर उन लोगों का घोंसला है,
1: सबको अपने अपने घर जाना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरे दिन इतवार था, रविवार, संडे। संडे को हम लोग हिंदी में रविवार कहते हैं, उर्दू में इतवार कहते हैं। तो बेटा क्या बोल रहा है? बेटा बोल रहा है कि दूसरे दिन इतवार था, हम सब लोग नीचे उतर कर आए तो दोनों फिर से मौजूद। हम लोग सोने के बाद नेक्स्ट डे दूसरे दिन रविवार का दिन था, हम लोग थोड़ी देर से उठकर जब हम लोग वापस आए तो हमने क्या देखा? हमने देखा गौरैया वहां पर आराम से मजे से बैठी हुई है, वो अपने मल्हार गा रही है। इस टेक्स्ट बुक का नाम क्या है बच्चों, मालूम है आपको? क्या? मल्हार।
2: मल्हार,
1: ये मल्हार का मतलब मालूम है आपको? मल्हार एक राग है। ओके, एक संगीत का एक राग है, हमारे क्लासिकल म्यूजिक में एक राग है जो बारिश के समय गाया जाता है, इसलिए हमारी टेक्स्ट बुक का नाम भी मल्हार है। तो ये चिड़िया क्या कर रही थी, ये गौरैया क्या कर रही थी? मल्हार गा रही थी। फिर पिताजी ने लाठी उठा ली, उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। पिताजी ने फिर से लाठी उठा ली, पिताजी ने फिर से डंडा उठा लिया और इस बार उन्होंने बहुत आसानी से गौरैयों को बाहर निकाल दिया। अब तो रोज यही होने लगा, गौरैया आती, पिताजी उन्हें बाहर करते। किसकी सहायता से बाहर करते? डंडे की सहायता, जो डंडा होता है ना, बहुत मोटा डंडा होता है, ठीक है? दिन में तो वो बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से अंदर घुस आती। दिन के वक्त पिताजी उन्हें बाहर निकाल देते। ये जो क्रिया है, ये प्रतिक्रिया है, ये जो एक्शन है, रोज होने लगा। कौन सा एक्शन?
2: बाहर निकालने।
1: किसको बाहर?
2: गौरैया को।
1: ओ, मगर उनको रोज बाहर निकाला जाता, वो दोनों रोज अंदर आ जाती। ओके, रोज दिन को बाहर चली जाती, रात को अंदर आ जाती। ओके, पता नहीं वो जाने किस रास्ते से अंदर घुस आती। ओके, उस फैमिली में तीन लोगों की समझ में नहीं आ रहा, तीन, एक जो गौरैया है, किस रास्ते से बाहर चली जाती है और किस रास्ते से वापस आ जाती है, जबकि सारे रास्ते बंद है। सारे रास्ते के ऊपर क्या कर दिया है? कपड़ा लगा दिया गया है, कपड़ा ठूस दिया गया है, मगर ये फिर भी किसी न किसी रास्ते से ये अंदर आई जाती हैं। अब इन तीनों व्यक्तियों को बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ये दोनों गौरैया कहाँ से अंदर आ जाती हैं। पिताजी परेशान हो उठे। ओके, परेशानी की तो बात है, अभी तो रोज रोज करना पड़ता है पिताजी को, गौरैयों को बाहर निकालना पड़ता है, मगर रात को गौरैया फिर से वापस आ जाती है। वो स्पैरोस भैया बहुत बुद्धिमान स्पैरोस हैं, तो भाई है ना, पक्षी भी बुद्धिमान होते हैं, है ना, मगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते बस, वो भी, मगर बुद्धि उनके पास भी होती है, वो भी हमारे जैसे ही होते हैं। पिताजी के ऐसे नहीं होना चाहिए, पिताजी उनको हमेशा बाहर करते हैं, हमेशा डंडा से दुत्कारते हैं। क्या आपके हिसाब से ये करना ठीक है?
2: नहीं,
1: है ना, क्यों?
2: क्योंकि वो भी उनका घर है।
1: हाँ, ये उनका घर है, ये हम सभी मनुष्य अपने अपने घर में जाते हैं, तो वो भी अपने घर में आना चाहती हैं। तो अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।
2: धन्यवाद अध्यापिका जी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का

0: रहेंगे, उनके हमराह उनके संग में भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
2: At the level of the Prime Minister,
3: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
1: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
4: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हम

0: हमारी संवाददाता से।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजर डान के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
0: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल SIT ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड TDB के पूर्व अध्यक्ष PS प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व TDB अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
2: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
0: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.10 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
3: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां NDRF के जवान फंसे हुए नागरिकों

0: को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में, रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government invites students protesting over NEET paper leak issue for talks. Prime Minister Narendra Modi announces fast-track courts for paper leak cases. Deadlock continues in Parliament over NEET paper leak issue. President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with her Romanian counterpart Nicușor Dan in Bucharest tonight. Normal life disrupted as heavy rainfall lashes several parts of Gujarat. Prime Minister Modi assures all possible help. 23rd Commonwealth Games set to begin at Glasgow tonight. And Vaibhav Suryavanshi steers India to 7-wicket victory in first T20 cricket match against Zimbabwe. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
3: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं।
4: We are always ready for dialogue. The doors of the government are always open and you are welcome to engage in discussions at any time as per your convenience. We are prepared to discuss every issue including those related to the movement as well as any other matters of concern. The Union Health Minister and Senior Leader Shri J.P. Nadda will hold discussions and I will also be present during the meeting.
3: इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।